अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसने कहा कि मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी फिर राह दिखाई। कहा तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है, मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 03003855।

जी जान चारो मसालो हर विस्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर एतमारो एटोस आई होंडा शोरूम मोटरसाइकिल जरड़ कर रेट ते दस्तयाब सर्विस मोटरसाइकिल जा तमाम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03011 96 851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: मार्केट, सराफा बाजार, मोबाइल मार्केट, पुरानी मार्केट समेत केतरन इलाइकन में दुकानदारन पारा पंहिंजा कारोबार बंद करे छॾियो। घारो शहर जा कारोबार मर्कज़ बंद रहिया। केतरन ई ॾींहनि खां जारी जमायत इस्लामी जो एहतजाज ख़त्म करण लाइ हुकूमत जो आला सतही वफ़्द अॼु मंझंदि 3 वॻे लाहौर जे इलाइक़े मंसूरा में जमायत इस्लामी क़ाइदनि सां ॻाल्हियूं कंदो। जमायत इस्लामी अमीर हाफिज़ुल नईमुर रहमान चयो आहे त वज़ीरनि ऐं सरकारी अमलदारनि लाइ वॾनि गाॾियुनि, मुफ़्त बिजली ऐं ॿारनि जी सहूलियत जो ख़त्म न पई कई वञे। हुकूमत पंहिंजा शाही ख़र्च वधाए रही आहे। हुकुमराननि महांगाई जो समूरो बार आवाम ते विझी छॾियो आहे। सिंध असेंबलीअ में पीपल्स पार्टी मेंबर्स सिंध जे इम्कानी विरांगे खे मुकमिल तौर रद्द करे छॾियो। सूबे खे टुकड़ा करण जा ख़्वाब ॾिसंदड़नि खे होश खां कम वठण जी सलाह। ऐवान में मरसूं मरसूं सिंध लेसूं जा नारा। सिंध जे विरांगे लसानियत जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो मुतालबो। सरदार ख़ान चांडियो चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर हुजे, संदसि लाॾो या हथनि जा खांबो ख़ान लीडर, सभु ॿुधी छॾिन त सिंध असांजी माउ आहे। कराची कंहिंजे पीउ ॾाॾे जी जागीर न पर असांजो आहे। नादिर मंगसी चयो त बलूचिस्तान में ॾिसो कहिड़ी सूरतयाल आहे, छा साॻी सूरतयाल सिंध में पैदा करणु चाहियो था? को बि ग़ैरतमंद सिंधी सिंध जो विरांगो क़बूल न कंदो। करोड़े सिंधियुनि खे मारण खां अॻु सिंध खे नथो विराए सघिजे। मोहम्मद बख्श महर, ग़ुलाम क़ादिर चांडियो, साजिद जो के इमदाद किताफ़ी, मारी राशिदी ऐं शाज़िया करीम चयो त पाकिस्तान जो बुनियाद सिंध ऐं सिंध जो बुनियाद पाकिस्तान आहे। ॿिन्ही खे हिक ॿिए खां धार नथो करे सघिजे। सिंध असां लाइ माउ जीअं आहे, माउ खे टुकड़ा नाहे कयो वेंदो। धरती ख़ातिर बचो बचो क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहे। जाम महताब लहर, सुहेल सियाल, बुरहान ख़ान चांडियो, आसिफ मूसा, आसिफ ख़ान, हिना दस्तगीर ऐं हीर सो बेस में हिसो वठंदे चयो त सिंध खे अमण मञूं था त उन जी वहदत ऐं लसानियत जो तहफ़ुज़ बि करियूं था। सिंध सां मोहबत ऐं वहदत जो तहफ़ुज़ सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। इंतज़ामी यूनिटनि जे नाले ते माण्हुनि खे बेवकूफ़ न बणायो। सिंध असेंबलीअ में MQM मेंबर्स आबादी जे हिसाब सां इंतज़ामी यूनिट्स खे वक़्त जी ज़रूरत करार ॾेई छॾियो। कुरतिल लैन चयो आहे त इंतज़ामी यूनिट्स जी ॻाल्हि सिंध खे विराइण लाइ न पई कई वञे। इंतज़ामी मामलनि में बहितरी लाइ इंतज़ामी यूनिट ठाहिणु घुर्जे। जमाल अहमद चयो आहे त कराची जे मसलनि बाबति आवाज़ उथण ते नाराज़ थियण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तनि ते ॻाल्हाइणु घुर्जे। कराची में रियासत ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि त उन्हनि ख़िलाफ़ FIR केरु दाख़िल कंदो? फरहान अंसारी चयो त सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स बाबति उथंदड़ आवाज़नि खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां उन्हनि जे सबबनि ते बहस कयो वञे। सिंध सां मोहबत या पाकिस्तानी हुजण जो कंहिंखे सर्टिफिकेट ॾियण जी ज़रूरत नाहे। जमायत इस्लामी जे मेंबर मोहम्मद फारूक चयो त सिंध असांजी धरती आहे त कराची बि असांजो शहर आहे। कराची सां मोहबत कंदड़ कंहिंखे वज़ाहत ॾियण जा पाबंद नाहे।

सिंतास मुआहदे बाबति सारसी अदालत जो फैसलो वाज़े आहे। हिक तरफ़ी क़दम सां मुआहदो ख़तम नथो थी सघे। भारत खे सफ़ारती मुआहद समेत हर हंधि शर्मिंदगीअ खे मुंहुं ॾियणो पियो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त सिंतास मुआहदे में कामा ऐं फुल स्टाफ समेत का बि तब्दीली ॿिनि धुरियुनि जी राज़बे सां थी सघे थी। वफ़ाक़ी काबिना इस्लामाबाद में मकानी हुकूमतनि जे निज़ाम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ज़रियनि मूजिबि इस्लामाबाद मकानी हुकूमतनि बाबति बिल घरू मामलनि वारे स्टैंडिंग कमेटी में मंज़ूरीअ लाइ पेश थींदो। इस्लामाबाद मकानी हुकूमतनि जो निज़ाम टिनि तकनि ते ॿधल हूंदो। काउंसिल मेंबरनि में जनरल काउंसिल औरतनि ऐं अकलियतनि जी नुमाइंदगी शामिल हूंदी। कमेटीअ मां मंज़ूरी खां पोइ बिल सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में मंज़ूरीअ लाइ पेश कयो वेंदो।

हुकूमत पेट्रोल ऐं डीजल जे अघनि में हिकु भेरो ॿीहर वाधि करे छॾी। पेट्रोल ॿ रुपया उणटीह पैसा फी लीटर महांगो थियण खां पोइ नओं अघु 346 रुपया 16 पैसा मुक़ररु। डीजल 1 रुपयो 11 पैसा फी लीटर।

0: मांगो थियण खां पोइ 9 अघ 372 रुपया 3 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीजन पारां 3 सितंबर लाइ पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि जो नोटिफिकेशन जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूप पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 AM to 5 PM ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 03001-9196-851।
4: अई अदी, अज त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
5: छो न ख़ुशि थियां अदी, जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
4: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर

0: कारण जो चारो मसालो इखाराए
1: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राप्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

is brought to you by

जेकमा बादशाह छो मीरपुर माथेलो कलोई डेरकी बदीन मिठी कश्मोर ठठो तलार झुलो डिगड़ी ठुल कंदकोर डेरकी छाछरो मदेजी सपरन टंडो मोहम्मद जान ए बेन शहर में शटरबंद हड़ताल। लाहौर के भी मुख्त इलाक में कारोबार मरकज न खुलिया। अनारकली बाजार लक्ष्मी चौक गुलबर्ग बेन इलाक में कारोबार बंद पैन रहो।

सीनियर वजीर शर्जील नामेमण पारां कराची में हड़ताल दौरान भंडरा वारनि वाकियनि जी मज़म्मत। शर्जील नामेमण चयो आहे त सियासी मक़सदनि लाइ मिल्कियतनि जो नुक़सान करण ऐं शहरनि खे तकलीफ़ पहुचाइण मज़म्मत जोॻो अमल आहे। एहतजाज जे नाले ते शहर खे जरगमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। खानपुर महर भरसां लोन बिरादरी जे ॿिन धुरियुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, हिकु ज़ख़्मी। ॻोठ सूमर मोरे भरसां पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे मौज अली लुंड खे क़तल कयो। मक़तूल जे वारसनि मौजूब अदालत हाज़िर ते वञण दौरान हथियारबंदनि हमिलो कयो, जंहिं जे नतीजे में मौज अली क़तल थी वियो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।

0: ऐं थाणो बोलाखान में सोलंगी मोहले में भित किरण सबब निंड पयल मासूम ॿार फौत सदमे में ॾाॾी बि हयाती विञाए वेठी भित किरण जे नतीजे में निंड पयल 12 वरियन जे मासूम अज़रा धीअ गाज़ी सोलंगी फौत थी वई ॿार जे फौत थियण जो सदमो बर्दाश्त न कंदे संदसि ॾाॾी जांदुल बि फौत थी वई
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
2: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
1: असली चीजान चारो मसालो जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा जीजान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जीजान चारो मसालो ढोरे सेहतमंद जीजान चारो मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ

0: फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अस्सलाम वालेकुम। अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: पैर छुए हम ये नहीं कर सकते.
1: आई नो.
0: यू नो?
2: यस, मैंने उस किताब में सब पढ़ लिया. इंटरकोर्स फॉर डंबोस बाय डॉक्टर रिचर्ड के वूमा.
0: ओके,
2: नाइस पिक्चर्स.

0: Tyson, please.
1: Lunch. Quick. Bye. Hi, Joe.
2: Bye.
1: Meri aankhon ka tara.
0: Okay.
1: Please, officer.
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे बग़ैर फीस कन सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो सूर घटि ॿुधलनि

0: दीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। 100 ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो, डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुप पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर केल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खारजिन जे उत्तर वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद ते पाकिस्तान में दाखिल जी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज जी कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 15 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिब 31 अगस्त ऐं 1 सितंबर जे विचवारी रात पाक अफगान सरहद ते खारजिन जे पाकिस्तान में दाखिल थियण जी कोशिश नाकाम बणाई वई। क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल खारजिन वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। अफगान तालिबान हुकूमत पंहिंजे सरज़मीन जे इस्तेमाल खे रोकण में नाकाम रही आहे। फोर्सिस जूं दहशतगर्दी ऐं दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं

सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमर पारां कराची में हड़ताल दौरान भंड्रा वारनि वाक्यनि जी मज़म्मत। शर्जील इनाम मेमर चयो आहे त सियासी मक़सदनि लाइ मिल्कियतनि जो नुक़सान करणु शहरनि खे तकलीफ़ पहुचाइणु मज़म्मत जोॻो अमल आहे। एहतियात जे नाले ते शहर खे जड़माल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान जा कोइत में अमेरिकी फौजी अॾनि ते हमला। कोइती फौज पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा। ईरानी फौज चयो आहे त कोइत में अमेरिकी फौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। कोइती फौज चयो आहे त ईरानी मिज़ाइल ऐं ड्रोन्स खे फिज़ा में तबाह कयो वियो आहे।

अमेरिका जो ईरान से व्यापार कंदड़ मुल्कन के सख्त पैगाम पाबंदियों लगाने की धमकी भी रही छड़ी। अमेरिकी परदेही वजीर मार्क रूबियो है ईरान के अमेरिकी पाबंदियों का बचन जो जरियो बढ़जंदड़ मुल्कन ते भी पाबंदियों लगायू वी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई है अमेरिका के हाँ तेहरान की नई हिकमत अमली के मुंह डेणो पव। अमेरिका के हाँ जहनुम जी ऊनाई में निकरण जो गस न मिलो।

लाहौर की अदालत में अदाकारा मोमिना इकबाल के हिरासा करने वाले केस की बुधरी एमसीसीआईए एमपीए साकिब संदस जाल सुमेरा के जांच ऑफिसर पारा रिपोर्ट जांच रिपोर्ट अदालत में पेश अदाकारा मोमिना इकबाल जो साकिब के मुअतल करण जो मुतालबो हिरासा करण जो साबितियों सोशल मीडिया से रखने जो ऐलान।

0: खानपुर महर भरसां लुन बिरादरी जे बिन दिन में जेड़ो एक जणो कतल एक जख्मी गोठ सूमर मोरे भरसां पुराने तकरार का हथियार बंदन फायरिंग करे मौज अली लुंड के कतल कयो। मकतूल जे वारसन मूजिब अदालत हाजिरी ते वञण दौरान हथियार बंदन हमलो कयो जंहिं जे नतीजे में मौज अली कतल थी वियो। जवाबदारन खे गिरफ्तार कयो वञे। थाणो बोला खान में सोलंगी मोहल्ले में भित किरण सबब निंड पयल मासूम बारड़ी फोत सदमे में ॾाॾी बि हयाती विञाए वेठी। भित किरण जे नतीजे में निंड पयल 12 वरनि जी मासूम अज़रा धीअ गाज़ी सोलंगी फोत थी वई। बारड़ीअ जे फोत थियण जो सदमो बर्दाश्त न कंदे संदसि ॾाॾी बि फोत थी वई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे

क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते दे लाए 03201800003।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो।
1: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर। 03000 3105109 03000 3105109।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी,
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
5: हाँ साईं, गाल भी एड़ी आहे।
4: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आहे।
5: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
4: छा छा?
5: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराएं। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे तो।
4: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई, पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
5: साईं रेडी थे ता बुधाएं बुध अजी वठी अज।
4: मां हाणे ही तो वणा त जिया असी भी खीर वधायो ऐ नोट कमायो।
5: हां सही हां।
6: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर आई सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खारिज के उत्तर वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद ते पाकिस्तान में दाखिल की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 15 खारजी दहशतगर्द मार वया। आईएसपीआर मूजिब 31 अगस्त ए 1 सितंबर के विच में वारी रात पाक अफगान सरहद ते खारजन के पाकिस्तान में दाखिल थियण की कोशिश नाकाम बनाई वही। क्लियरेंस ऑपरेशन दौरान मारजी वयल खारजन वटां हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वयो। अफगान तालिबान हुकूमत पंहिंजे सरजमीन जे इस्तेमाल खे रोकण में नाकाम रही आहे। फोर्सेज जूं दहशतगर्दी ए दहशतगर्दनि जे खात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रहंदियूं। जमायत इस्लामी जे सर ते मुल्क में वधंदड़ महंगाई ए पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमत में वाध खिलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में शटरबंद हड़ताल। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में शटरबंद हड़ताल। कोरंगी क्रॉसिंग ते चकरियूं। अणॼातल माण्हुनि में मोटरसाइकिल्स खे बाहि ॾेई छॾी। हैदराबाद जा बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा बंद। जैकमाबाद, चाचरो, मीरपुर माथिलो, कलोई, डेहरकी, बदीन, मिठी, कश्मोर, ठठो, तलार, जुडो, डिगड़ी, ठुल, कनकोट, डेहरकी, चाचरो, मदेजी, सकरन, रनमोहन खान ऐं ॿियनि शहरनि में शटरबंद हड़ताल। लाहौर जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबारी मर्कज़ न खुलिया। अनारकली बाज़ार, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में कारोबार बंद कयल। सीनियर वज़ीर शर्जिली नाम मेमण पारां कराची में हड़ताल दौरान भंडरा वारनि वाक़यनि जी मज़म्मत। शर्जिली नाम मेमण चयो आहे त सियासी मक़सदनि लाइ मिल्कियतुनि जो नुक़सान करणु ऐं शहरनि खे तकलीफ़ पहुचाइण मज़म्मत जोॻो अमल आहे। एहतियात जे नाले ते

0: तारियूं लगायूं वयूं आहिनि। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका खे हाणे तेहरान जी नई हिकमत अमली खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिका खे हाणे जहनम जी उनाई मां निकिरण जो रस्तो न मिलंदो। ॾखण अफ्रीका खां हारायो, भारत आयरलैंड खां हारायो आहे। छा ॿिन्ही मुल्कनि में बि क्रिकेट ख़तम थी वई आहे? हुननि खे मसलो टीम जी शिकस्त न पर मूसां आहे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी तनक़ीद खे रद्द कंदे चयो आहे त क्रिकेट ख़तम थियण वारियुनि ॻाल्हियुनि खे मुनासिब न आहे। वन डे ऐं टी ट्वेंटी में टीम बहितर कारकर्दगीअ जो मुज़ाहिरो कयो आहे। टेस्ट में मसला आहिनि, फ़रिश्ता किथे बि वेठल न आहिनि। मूसां कंहिंखे भूस आहे त भले तनक़ीद करे क्रिकेट खे निशानो न बणाए। लाहौर जी अदालत में अदाकारा मोमिना इक़बाल खे हिरासां करण वारे केस जी ॿुधणी NCCIMAPA साकिब ऐं संदसि ज़ाल सुमेरा खे बेॾोही करार ॾेई छॾियो। जांच आफ़ीसर पारां रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट अदालत में पेश। अदाकारा मोमिना इक़बाल जो साकिब खे मुअतल करण जो मुतालबो, हिरासां करण जूं साबितियूं सोशल मीडिया ते रखण जो ऐलान। खानपुर लुंड बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो, हिकु जहिड़ो क़तल, हिकु ज़ख़्मी घोट सूमर मोरे भरिसां पुराणे तकरार खां हथियारबंदनि फायरिंग करे मौज अली लुंड खे क़तल कयो। मक़तूल जे वारसनि मौजूब अदालत हाज़िरी ते वञण दौरान हथियारबंदनि हमिलो कयो, जंहिं जे नतीजे में मौज अली क़तल थी वियो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद आटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद आटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है।

0: आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 03011 96 851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। कुछ मानू जे ख्वाब सा सिंध न विराए भी सिंध जो आवाम उनन जा ख्वाब चकना चूर करे छिंदो। शाहिद थईम चयो आहे त सिंध खिलाफ़ कंहिं बि कदम खे रद्द कयूं था। वज़ीर आज़म वापार में सहूलतनि जी फराहमी लाइ ट्रेंड फेसिलिटेशन बोर्ड क़ाइम करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। बंदरगाहनि जी कारकर्दगी खे वधीक बहितर बणाइण लाइ तकड़ा कदम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि वापार में सहूलतूं ॾियण बाबति इजलास। वफाकी वज़ीरनि जी बि शिरकत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो आहे त पोर्ट चार्जिस खे नई घटिताई सां बंदरगाहनि जे इस्तेमाल में घणी बहितरी आई आहे। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त बंदरगाहनि ते सहूलतूं बि वधायूं वञनि। जमायत इस्लामी जे सर ते मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतनि में वाद ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में शटरबंद हड़ताल। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबार न खुलियो। कोरंगी में चकरियूं टायरनि खे बाहियूं। हैदराबाद सखर शिकारपुर जकमाबाद ऐं टंडो अलियार में जुज़वी हड़ताल। छाछरो मीरपुर माथिलो कलोई डेरकी बदीन मिटी कश्मोर ठठो तलार जुडो डिगड़ी ठुल कंदकोट डेरकी छाछरो मदेजी सकरन टंड मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में शटरबंद हड़ताल। लाहौर जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबारी मर्कज़ न खुलिया। अनारकली बाज़ार लक्ष्मी चौक गुलबर्ग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में कारोबार बंदि पियल। कारकुननि ऐं वापारियुनि में चकरियूं बि थियूं। वरे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कोरंगी में हालतूं ख़राब थियण जो नोटिस वरितो। आईजी सिंध खे शहर पसंदनि खिलाफ़ बिना कंहिं फ़र्क़ जी कार्रवाई करण जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह चयो आहे त कोरंगी क्रॉसिंग ते बाहि लॻाईंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सीनियर वज़ीर शर्जिली नामेमन पारां बि कराचीअ में हड़ताल दौरान बंदि रहा।

हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। अफ़गान तालिबान हुकूमत पंहिंजी सरज़मीन जे इस्तेमाल खे रोकण में नाकाम रही आहे। फोर्सिस दहशतगर्दी ऐं दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं कारवायूं जारी रहंदियूं। ईरान जा कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ते हमला। कुवैती फ़ौज पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा। ईरानी फ़ौज चयो आहे त कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। कुवैती फ़ौज चयो आहे त ईरानी मिज़ाइलनि ड्रोन्स खे फिज़ा में तबाह कयो वियो आहे। अमेरिका जो ईरान सां वापार कंदड़ मुल्कनि खे सख़्त पैगाम। पाबंदियूं लॻाइण जी धमकी बि ॾेई छॾी आहे। अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान खे अमेरिकी पाबंदियुनि खां बचण जो ज़रियो बणजंदड़ मुल्कनि ते बि पाबंदियूं लॻायूं वेंदियूं। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका खे हाणे तेहरान जी नई हिकमत अमलीअ खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिका खे हाणे जहनम जी बुनाईअ मां निकिरण जो रस्तो न मिलंदो। ॾखण अफ्रीकन बि खां हारायो। भारत आयरलैंड खां हारायो आहे। छा ॿिन्ही मुल्कनि में बि क्रिकेट ख़तम थी वई आहे। हुननि खे मसलो टीम जी शिकस्त सां न पर मूंसां आहे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी तनक़ीद खे रद्द कंदे चयो आहे त क्रिकेट ख़तम थियण वारियूं ॻाल्हियूं मुनासिब न आहिनि। वनडे ऐं टी ट्वेंटीअ में टीम बहितर कारकर्दगीअ जो मुज़ाहिरो कयो आहे। टेस्ट में मसला आहिनि। फ़रिश्ता किथे बि वेठल न आहिनि। मूंसां कंहिंखे बि बुग्स आहे त भले तनक़ीद करे क्रिकेट खे निशानो न बणाए। लाहौर जी अदालत में अदाकारा मोमिना इक़बाल खे रासा करण वारे केस जी ॿुधणी। NCCI AMPA साकिब ऐं संदस ज़ाल सुमेरा खे बेॾोही करार ॾेई छॾियो। जांच आफ़िसर पारां रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट अदालत में पेश। अदाकारा मोमिना इक़बाल जो साकिब खे मुअतल करण जो मुतालबो। रासा करण जूं साबितियूं सोशल मीडिया ते रखण जो ऐलान।

0: खानपुर महर भरसा लुंड बिरादरी के बिन धुरी में झेड़ो एक जणो कतल एक जख्मी गोट सूमर मोरे भरसा पुराने तकरार का हथियार बंधन फायरिंग करे मौज अली लुंड के कतल कयो मकतूल के वारसन मूजिब अदालत हाजिरी थे वन दौरान हथियार बंधन हमलो कयो जैसे नतीजे में मौज अली के कतल कयो वयो जवाबदारन के गिरफ्तार कयो वयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-310-5109-03000-310-5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर,

0: एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-8569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 196 851

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000072734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई,
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध जो वड़ो वजीर हिते ही रहंदो। सूबाई वजीर सैद गनी आहे चयो आहे त एमक्यूएम जागवान ॿाहिर सूबनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध असेंबली में एमक्यूएम चवे थी त विरामो नथा चाहियूं। एमक्यूएम पाण मुंझारे जो शिकार आहे। जमात इस्लामी एमक्यूएम जे रोज ते हलणु शुरू करे छॾियो आहे। एमक्यूएम कराचीअ मां ख़तम थी वई। जमात इस्लाम खे बि अवाम रद्द करे छॾियो आहे। वज़ीर-ए-आज़म वापार में सहूलियतुनि जी फराहमीअ लाइ बोर्ड क़ाइमु करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। बंदरगाहनि जी कारकर्दगी वधीक बहितर बणाइण लाइ तकिड़ा क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि वापार में सबत इजलास वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी बि शिरकत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पोर्ट चार्जिस में घटिताई सां बंदरगाहनि जे इस्तेमाल में घणी बहितरी आई आहे। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त बंदरगाहनि ते सहूलियतूं बि वधायूं वञनि। जमायत इस्लामी जे सॾु ते मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतनि में वाधि ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में शटरबंद हड़ताल। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबार न खुलियो। कोरंगीअ में चकरियूं, टायरनि खे बाहियूं। हैदराबाद, सखर, शिकारपुर, जेकमाबाद ऐं टंडो अडयार में जुज़वी हड़ताल। छाछरो, मीरपुर माथिरो, कलोई, डेरकी, बदीन, मिठी, कश्मोर, ठठो, तलार, झुलो, डिगड़ी, ठुरी, कंदकोट, डेरकी, छाछरो, मदेजी, सकरन, टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में शटरबंद हड़ताल। लाहौर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबारी मर्कज़ न खुलिया। अनारकली बाज़ार, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में कारोबार बंदि पयल। कारखाननि ऐं वापारियुनि में चकरियूं विधियूं। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह कोरंगीअ में हालतूं ख़राब थियण जो नोटिस वरितो। IG सिंध खे शरपसंदनि ख़िलाफ़ बिना कंहिं फ़र्क़ जी कार्रवाई करण जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह चयो त कोरंगी क्रॉसिंग ते बाहि लॻाईंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सीनियर वज़ीर शर्जिलीना मेमण पारां बि कराचीअ में हड़ताल दौरान भंडरा वारनि वाक़िअनि जी मज़म्मत। शर्जिलीना मेमण चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते शहर खे जरगमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

धंधे खात्मे ताई कारवाइयां जारी रहंदियूं। ईरान जा कुवैत में अमेरिकी फौजी अड़न ते हमला, कुवैती फौज पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा। ईरानी फौज चयो आहे त कुवैत में अमेरिकी फौजी अड़न खे निशानो बणायो वियो आहे। कुवैती फौज चयो आहे त ईरानी मिज़ाइल ऐं ड्रोन्स खे फिज़ा में तबाह कयो वियो आहे। अमेरिका जो ईरान सां वापार कंदड़ मुल्कन के सख्त पैगाम, पाबंदियों लगाने की धमकी भी दई छी। अमेरिकी परदेही वजीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान के अमेरिकी पाबंदियों का बचण जो जरियो बणजंदड़ मुल्कन ते भी पाबंदियों लगाई वेंदियूं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका के हाणे तेहरान के नए हिकमत अमलीअ के मुंह डियणो पवंदो। अमेरिका के हाणे जहन्नुम जी ऊनाई मां निकरण जो रस्तो न मिलंदो। पाबंदी मड़ियल अवामी एक्शन कमेटी जा हथियारबंद जथा बदमनीअ जो सबब बणजी रहिया आहिनि। हथियारबंद जथनि सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं मिल्कियतनि ते हमला कया आहिनि। आज़ाद कश्मीर पुलिस जे तर्जुमान खावर अली चयो आहे त लुफेड़ कमेटी रियासती अमुन तबाह करे रही आहे। रियासत तशद्दुद कंदड़नि ऐं लुफेड़ पकड़ंदड़नि खे आज़ाद नथी छॾे सघे। आज़ाद कश्मीर में लुफेड़ पकड़ण जी कोशिश कई पई वञे। लुफेड़ टोलो नौजवाननि खे गुमराह करण जी कोशिश करे रहियो आहे। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ 600 बिस्तरन वाले अस्पताल की तामीर बाबत इजलास। वरे वजीर लाड़काने में जदीद अस्पताल जो कम जुलाई 2028 तीन मुकम्मल करण जो हदफ डेई छो। सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त अवाम के मयारी जदीद तिबी सहूलतूं डेण हुकूमत की तरजीह आहे। मुरीद शाख में झेड़े दौरान जख्मी थियल पीरसन दम डेई छो। वारसन जो लाश रखी थाने आलो धरणो। गोठ सथियल मज़ारी वासी मोहम्मद सिद्दीकी मज़ारी के वारसन खमड़ा थाने अगया लाश रखी धरणो आयो। वारसन जो चवण है जमीनी तकरार तां बिरादरी के मानू सा झेड़े दौरान पीरसन जख्मी थे हो। वाके जो केस छह जवाबदार खिलाफ दाखिल थियल है। नोटिस वी खेल गिरफ्तार किया वे। पुलिस मौजूद जवाबदार घर खाली कर फरार थी वह संदन गिरफ्तारी लाय पाया पा वन। फुलजी स्टेशन भरसा 8 जणन जे कतल बाद पुलिस जो कचे में ऑपरेशन। 6 शकी गिरफ्तार। गोरदानो चांडियो में 8 जणन जे कतल में घुरबल जवाबदारन जी गिरफ्तारी लाइ पुलिस ऑपरेशन कयो। पुलिस द्वारन जा ठाकर ट्राहे पट करे छड्या। 6 शकी माण्हू खे हिरासत में वरितो वियो। वधीक जांच जारी आहे। मिठी भरसा पुलिस हिरासत में मुबैना कतल थियल रसूल बख्श दल के केस की बुधरी जमानत रद्द थियण ते ब पुलिस अहलकार फरार। सिपाही शबीर अहमद जुणे जो अब्दुल करीम रहमू जमानत रद्द थियण ते फरार थिया। वारसन जो चवण है बिन्हीं जवाबदारन के पुलिस कोर्ट मां पाण भजायो। सिपाही भूरो मल मेघवाल जमानत कराए फरार थी। कंडियारो भरसा डोडा माइन रोवर टॉप थियण लगो। पानी घर में दाखिल रहवासियों जो एहतजाज। डोडा माइन रोवर टॉप थियण सबब कच्ची आबादी के घर में पानी दाखिल। रहवासियों कोर्ट रोड से मुजाहरो कर धरणो हो। मुजाहरीन पारा डोडा माइनर जा कपर मजबूत करण ए घर में दाखिल थियल पानी नेकाल करण जो मुतालबो। दादू में टिन बारन की माओ के अगवा जो केस दाखिल। पुलिस जा छापा। ब जणा गिरफ्तार। जुगताबाद पाड़े में मुलाजिम कलीमुल्ला जावरी के जाल रीमा मुबैना तौर अगवा। कलीमुल्ला जावरी की फरियाद निसार पंवर ए मोहसिन पंवर समेत छह जन खिलाफ केस दाखिल। एस सेक्शन पुलिस चिंगची रक्षा हलाइंदड़ निसार पंवर की गिरफ्तारी लाए घर से छापो हो। पुलिस जवाबदार के घर पातन के हिरासत में वी एस सेक्शन थाने मुंतक।

सुल्तान में जोड़े बोट जे पानी में शादी करे छी। बोट सबब चर्च पानी हेठ हुजण सबब जोड़ो पानी मां गुजरंदे चर्च पहुतो। मेहमान भी पानी में शादी में शरीक थिया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: असली चीजां चारों मसालों जी सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर 34,000 डीसी करे खरीद कंदा। जीजान चारों मसालो ढोर जो हाजमो दुरुस्त, जीजान चारों मसालो ढोर सेहतमंद, जीजान चारों मसालो, जीजान चारों मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
4: न अदा।
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

सिंध असेंबली में सूबन बाबत रित ते चौथे डी भी बहस जारी। एम क्यू एम एम पी ए मोइज अनवर चयो आहे ते कराची के सिंध का अलग करण जी गाल केर भी न करे रहो आहे। एम क्यू एम वाज़े कयो आहे ते कराची सिंध जो हिस्सो आहे, अवाम जी बेहतरी लाइ इंतकामी यूनिट ठाहिण ते गौर थी सघे थो। पीपी जे अरबाब अमीर अमानुल्लाह चयो आहे त खबर पइजी वेंदी त सिंध जो केर हलाली पुट आहे ऐं केर हरामी। एम क्यू एम जे मुसरत जबीन चयो आहे त इंतकामी यूनिटनि जो मुतालबो को गुझी एजेंडा न आहे, मक़सद रुगो बहितर निज़ाम जी बहितरी आहे। सिकंदर खातून चयो आहे त करप्शन ऐं बद इंतज़ामी सबब सिंध में नवनि इंतज़ामी यूनिटनि जो मुतालबो करे रहिया आहियूं। पीपी जे साइमा आगाह चयो त जेका जमायत सिंध जे माण्हुनि सां गॾु बीह नथी सघे उहा सिंध जी मुहाफ़िज़ कीअं थी सघे। ज़ुबैर जुणे जो चयो त सिंध हिकु आहे, हिकु हुई ऐं हमेशा हिकु ई रहंदी। एम पी ए जावेद आराई चयो त सिंध में आबाद लखे पंजाबी सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि, सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ कंहिं बि क़दम जे भरपूर मुखालफ़त कंदासीं। इंतज़ामी यूनिटनि जो मतिलबु जेकॾहिं डिवीज़न ऐं ज़िला आहिनि त ॻाल्हि थी सघे थी। इंतज़ामी डिवीज़न जे आड़ में विरहाङो क़बूल नाहे। सिंध जो वॾो वज़ीर हिकु ई रहंदो। सूबाई वज़ीर सैद घनी चयो आहे त एम क्यू एम जा अॻवान ॿाहिरि सूबनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध असेंबली में एम क्यू एम चवे थो त विरहाङो नथा चाहियूं। एम क्यू एम पाण मुंझारे जो शिकार आहे। जमायत इस्लामी एम क्यू एम जे रोशन ते हलणु शुरू करे छॾियो आहे। एम क्यू एम कराचीअ मां ख़तम थी वई। जमायत इस्लाम खे बि अवाम रद्द करे छॾियो आहे। एम क्यू एम जे नसीर अहमद मरसू मरसू सिंध न ॾिसूं नारे खे तस्बीह करार ॾेई छॾियो आहे। नसीर अहमद चयो आहे त तासुब जो नारो लॻाए सिंध वासियुनि खे सिंध जे पठाणनि ऐं पंजाबियुनि सां विढ़ाइण चाहिनि था। क़ौम परस्ती लसानियत ऐं सूबाइत ते मरंदड़ जहनवी आहिनि। सिंध जे अवाम खे ॿुधायो वियो त कराचीअ जा उर्दू ॻाल्हाईंदड़ अवां जा दुश्मन आहिनि। चइनि ॾींहनि जे बहस दौरान वाज़े थी वियो आहे त केर सिंध जे विरांगे जे हक़ में आहे ऐं केर मुखालफ़त में आहे। सिंध हुकूमत जी ख़राब हुकुमरानीअ ते तनक़ीद ज़रूरी थी आहे।

वज़ीर आज़म वापार में सहूलतनि जी फराहमीअ लाइ बोर्ड क़ाइमु करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। बंदरगाहनि जी कारकर्दगी वधीक बहितर बणाइण लाइ तकिड़ा क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि वापार में सहूलतूं ॾियण बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी बि शिरकत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पोर्ट चार्जिस में घटाई सां बंदरगाहनि जे इस्तेमाल में घणी बहितरी आई आहे। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त बंदरगाहनि ते सहूलतूं बि

पहल कारकुनन ने व्यापारिन में चक्रियों देती हूँ। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह कोरंगी में हालतों खराब थे जो नोटिस वरतो। आईजी सिंध के शर पसंद खिलाफ बिना कें फर्क की कार्रवाई करने की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह तो कोरंगी क्रॉसिंग से बाहे लगाइंदड़न के गिरफ्तार किया वे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमर पारां भी कराची में हड़ताल दौरान भंजड़ा वारन वाकन की मजम्मत। शर्जील इनाम मेमर है एहतजाज के नाले से शहर के जर्गमाल बनाने की इजाजत न डनी वी। कौमी असेंबली के घरू मामलन बाबत स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास। इस्लामाबाद लाए मकानी हुकूमतन वे कानून 2026 की मंजूरी। पीपल्स पार्टी पारा मुखालिफत। कादिर पटेल इस्लामाबाद सूबो थो तो कड़ो निजाम हों। मकानी चूंड तो इस्लामाबाद ए पंजाब में थियणी ना। बिल से इख़्तिलाफ़ी नोट डनो वो। मुल्कती वजीर तलाल चौधरी इस्लामाबाद में थाना विकरो नाहन थींदा न ही कब्जा कया वेंदा। बरसात जो पानी भी इस्लामाबाद जल्द निकरी वयो हो। कारकर्दगी ते गाल थी सगे थी।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509, 03000 310509।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338-5569।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। जल्दी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: सोनी अॼु त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पौंदी नक कन छो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस थ्री जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम्स एंड मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कर होंडा कंपनी जा तमाम पे मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापान कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-35120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में जोर जड़ों की निशोनुमा में मदद दे और सेहतमंद बनाए लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान ले न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारा

0: जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार एं जानवर जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03075921200।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर, राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808743।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: देखो 20 साल पहले की बात है, बहुत सीनियर इंजीनियर प्रोफेशनल, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, ताल्लुक उनका जो है अंदरून संसद था। तो मैंने उनसे पूछा कि सुनो साहब यार ये बताए ना कि अगर कराची को हम अलग एक सूबा बना लें, कराची हैदराबाद को लोअर सिंध को एक अलग सूबा बना लें तो इसमें क्या हर्ज है। अब जवाब सुने ये बड़ा गौर से, उन्होंने कहा कि साइंस का मतलब आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि तुम्हारी मां के दो टुकड़े कर दें तो उसमें क्या हर्ज है।
2: स्पीकर साहब ये जितने मैंने ये 6-7 क्लिप्स, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्लिप्स हैं, टाइम की मैंने बड़ी पाबंदी की, ये 6-7 लोग असेंबली मेंबर नहीं है, मैं गुजारिश करूंगा तमाम मेंबर से कि उनकी तालियां बजा के उनके लिए आप वेलकम उनको करें, उनको शाबाश दें, उनको सर इनमें से कोई भी जिनकी मैंने तकारीर चलाई एक भी सिंधी नहीं था, सिंधी स्पीकिंग नहीं था, इनमें से कोई एक भी पीपुल्स पार्टी तालुक नहीं था उसका, तो इनको क्या वजह थी। और सारे बड़े नामवर नाम है, सारे आजाद सहाफी, बड़े बड़े पाकिस्तान के एक वेल नोन सहाफी जिनको हर इंसान उनको तारीफ करता है, उनकी इज्जत करता है, ये वो लोग थे, ये वो इंपार्शियल लोग। और मैंने कहा कि सर
3: बनाते हैं तो इसलिए उनको इख्तियार होता है कि वो जब चाहे जितने मर्जी सूबे बना दें, तो यहां चूंकि सूबों ने मिलकर मुल्क बनाया है इसलिए शायद वो इख्तियार उतना आसानी से मुल्क को एक्सरसाइज नहीं कर सकता।
4: पाकिस्तान जब बना था और कराची को अलग करने की बात हो रही थी तो उस वक्त भी सिंध असेंबली ने करारदाद पास की थी कि ये मंजूर नहीं है, तो बोरान खत्म करने के लिए उस पर काबू पाने के लिए अखराजात कम करना है। आप ज्यादा सूबे बनाएंगे इस बोरान को मजीद शदीद करेगा, 4 गवर्नर के बजाय 12 गवर्नर हो गए, 12 चीफ मिनिस्टर होंगे, 12 सेक्रेटेरिएट होंगे, तो ये तो आपके अखराजात और बढ़ जाएंगे।
1: जब मैं सुनता हूँ ना इंतजामी यूनिट, मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक मशीनरी रखी हुई है सामने, आप कोई फैक्ट्री के फ्लोर पे हैं और आप ये कह रहे हैं यार मैं ये पुर्जा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा एफिशिएंट होगा, इसको इस मशीन से निकाल के इस मशीन में लगा दूंगा। अल्लाह के बंदो वहां इंसान रहते हैं, उन इंसानों की कोई तारीख है, उनका कोई सकाफत है, उनकी कोई शनाख्त है। यहां से कोई 20 साल पहले की बात है, बहुत सीनियर इंजीनियर प्रोफेशनल, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, ताल्लुक उनका जो है अंदरून संसद था। तो मैंने उनसे पूछा कि सुनो साहब यार ये बताए ना कि अगर कराची को हम अलग एक सूबा बना लें, कराची हैदराबाद को लोअर सिंध को एक अलग सूबा बना लें तो इसमें क्या हर्ज है। अब जवाब सुने ये बड़ा गौर से, उन्होंने कहा कि साइंस का मतलब आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि तुम्हारी मां के दो टुकड़े कर दें तो उसमें क्या हर्ज है।
2: अपने सारे मौकफ का क्या, उन्होंने कहा कि ये असेंबलीज ही डिसाइड करेंगी, चाहे वो पंजाब की असेंबली पंजाब के बारे में डिसाइड करेगी, सिंध की असेंबली सिंध के बारे में डिसाइड करेगी, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की असेंबली डिसाइड करेंगी। तो वहां पे पीएमएलएन की लीडरशिप ने बिल्कुल जो खामोशी

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तयाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
1: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
1: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
4: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।

0: ऐं अदी अॼु त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
1: छो न ख़ुशि थियां अदी, जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
0: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।

0: वज़ीर-ए-आज़म वापार में सहूलतनि जी फ़राहमी लाइ ट्रेड फैसिलिटेशन बोर्ड क़ाइम करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। बंदरगाहनि जी कारकरदगी वधीक बहितर बणाइण लाइ तकड़ा क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि वापार में सहूलतूं ॾियण बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी बि शिरकत।
1: लेडीज़ एंड जेंटलमैन,
0: चार्जेस में घटताई सां बंदरगाहनि जे इस्तेमाल में घणी बहितरी आई आहे। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बंदरगाहनि ते सहूलतूं बि वधायूं वञनि। जमायत इस्लामी जे सटे मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में वाद ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में शटर बंद हड़ताल। रांची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबार न खुलियो। करंगी में चकरियूं, टायरनि खे बाहियूं।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमर गोरी 03151575724
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह दहें खां शाम पंजे वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर ता वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਕਦਾ ਦੋਸਤ ਮੱਟੀ ਵੀਦਾ ਉਹ ਰੋਣ ਦਿਲੜੀ

رہی مرمر آئے

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तो उनकी आपस की बात मैं इस पे यही खत्म नहीं करता। वफाकी वुजरा एक वजीर साहब ने लाहौर पता नहीं इस्लामाबाद में कह दिया, उस पर हमने रिएक्शन दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रिएक्शन दिया था। कुछ ही दिनों के बाद साईं एक और हैं प्राइवेटाइजेशन के वजीर अलीम खान, सूबे तो बनाने पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान का प्लानिंग मिनिस्टर, जो प्लानिंग मिनिस्टर के लिए फायज है, वहां परसों उसने कहा कि पाकिस्तान में 18 सूबे बनने चाहिए। अखबार में छपा है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। ये ऐसे ऐसे जो बयानात आते हैं स्पीकर साहब, ये यकीनन मेरे दिल में सवाल पैदा करते हैं, हर एक के दिल में सवाल पैदा करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि बगैर किसी का नाम लिए, न मैंने एमक्यूएम का नाम लिया न किसी और वजीर का नाम लिया, मैंने बगैर किसी का नाम लिए कह दिया कि एक डिस्कशन शुरू हुई है। हमें पता है कि सिंधी असेंबली ने 5 दफा रेजोल्यूशन पास किए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने उठते हुए भी कहा था कि क्या वफाकी वजीरों को कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है? क्या उनको टाइम नहीं है पढ़ने का, या पढ़ना आता नहीं है? यह कह के मैंने कहा था कि एक डिस्कशन हो जाए और डिस्कशन के बाद मेरे असेंबली के मेंबरान अपनी राय देंगे कि इसके बारे में। ख्याल करें, ये हो गई डिस्कशन, 100 से ज्यादा लोगों ने बोला, उन्होंने भी दिल खोलकर बोला। और यही होता अगर मैं शुरू उठते ही मैं रेजोल्यूशन पेश करता तो वो बेंचें खाली मिलती। हमने
2: चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए एम सिद्दीक हिरापुर 03000310509 03000310509। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03000310509।

Hadi dur. Again tarifleyelim. Yeti yeti yeti gel. मिल्क नाइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहराबपुर। मिल्क नाइस ब्यूटी शो में तमाम सभी सुनने वालों को आबिद चौहान का सलाम, वेलकम भली कार खुशामदी जी आनुवाशात के और पखैर रागले।

आज की रिडल यानी कि पहली गुजारत देने जा रहा हूं, तो हमारा लाइव कॉलिंग नंबर भी बता दूंगा रिडल देने के बाद, तो अपने फोन कॉल्स रेडी रखें। जी जनाब, रिडल देने से पहले मैं आपको अपना लाइव कॉलिंग नंबर बताना चाहूंगा। हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300-931-9667। जी मैरापुर वालों, आज की रिडल जो है कि बहुत ही स्पेशल है। अगेन एंड अगेन मैं आपको नंबर बताना चाहूंगा। नंबर हमारा लाइव कॉलिंग नंबर, नंबर नोट कर लें, 0300-931-9667 पे आप हमें ज्वाइन करेंगे एफएम पे। और मेन चीज, असल चीज जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रोडक्ट के हवाले से परेशान है, परेशानी खत्म करें, हमारा हेल्पलाइन कॉलिंग नंबर 0300-310-5109 एम सिद्दीक और मलिक जफर इकबाल साहब से रابطہ कर सकते हैं। मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी और मिल्क राइस विटामिन सी।

जी तो हम आपको रिडल बताने जा रहे हैं, दिल थाम के बैठिए। रिडल ट्रिकी है, बड़ी सिंपल भी है और हार्ड भी है। देखते हैं कौन ज्यादा जो है कि टैलेंटेड है, हमारी अधियां माएं बहनें या हमारे भाई दोस्त मेल्स, यानी कि मेल्स या फीमेल्स। तो कॉलिंग कोई भी कर सकता है हमें मैरापुर से। देखते हैं कितना जो है कि सेंस रखते हैं लोग। इंग्लिश में रिडल कहते हैं, उर्दू में पहली है, सिंधी में गुजारत पिरोली।

मिलग्राइज ब्यूटी, खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले, और हम दावा नहीं दलील करते हैं। आज देखते हैं हमें दलील का मौका कौन देता है और मिल्क राइस प्रोडक्ट कौन अवेल करना चाहेगा। और मिल्क राइस प्रोडक्ट अवेल करने के लिए, एनी प्रोडक्ट अवेल करने के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, आपने हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। मलिक जफर इकबाल एम सिद्दीक साहब से रब्ता करेंगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज हम कर चुके हैं, लेकिन पहले ही ट्रैक से जो है कि लाल शाहबाज की कलंदर की हम धमाल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिडल बता दूं ताकि आपकी जब कॉल आए धमाल के बाद तो डबल धमाल हो जाए। आज की रिडल है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकता है। एड़ी वह केड़ी शय आहे जेको अंधो भी दिसी सके। तो ये रिडल पहली बताने के लिए आप हमारा लाइव कॉलिंग नंबर नोट कर ले। हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300-931-9667। रिडल अगेन सुन ले, पहली सुन ले, गुजारत बुधो। एड़ी केड़ी शय आहे जेको जेका अंधो भी दिसी सके। तो लेट्स एंजॉय द धमाल।

जी तो मैरापुर वालों, आप सुन रहे हैं एफएम 94 मैरापुर। जी एफएम 94 मैरापुर से इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मिल्क राइस ब्यूटी शो विद आबिद चौहान।

मुझे दिल जी पार्लिया मेंट जो मेंबर तू सुहणा, मुझे दिल जी पार्लिया मेंट जो मेंबर तू सुहणा, ही इश्क हुकूमत आहे मिनिस्टर तू सुहणा। तू प्यार जी पोलिंग तुझी सूंह के वोटिंग, तू प्यार जी पोलिंग तुझी सूंह के वोटिंग, ही दिलड़ी आ सेनेट सेनेटर तू सुहणा, मुझे दिल जी पार्लिया मेंट जो मेंबर तू सुहणा।

जी बुझो तो जाने, आपको रिडल दिए हमने कि ऐसी कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकता है। तो बताने के लिए आपको हमारा नंबर डायल करना पड़ेगा 03-9391-967। और जिन दोस्तों ने टैक्स किया है या टैक्स के वसीले से जो बता रहे, उनको रिप्लाई आखिर में एंड में हम बता देंगे किसका सही है किसका गलत है। रिप्लाई सुनने के लिए प्रोग्राम पूरा सुनते रहिए मिल्क राइस ब्यूटी शो, और प्रोडक्ट मेरापुर शाही बाजार में जाके आपने लाजमी अवेल करनी है। अवेलेबिलिटी के लिए आपने हमारे हेल्पलाइन कॉलिंग नंबर पे कॉल करनी है, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03-3105109। मलिक जफर इकबाल एम सिद्दीक साहब से रब्ता करेंगे।

प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आ, प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आ, पत्थर जे बुत खां आस लॻाए वेठो आ। हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, मां जंहिंजी ख़ातिर पाण भुलाए वेठो आ, प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आ।

बिल्कुल जी, आपके टेक्स्ट और मैसेज भी हमारी सराखों पे, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन जो है कि रिडल को बूझेंगे हम एंड तक। आपके रिप्लाई आ रहे हैं हमें और प्रोग्राम के एंड में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंधा भी देख सकता है, केड़ी शय आए जेका अंधो भी ॾिसी सघे थो।

जी, तो रिडल बूझने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है, हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300 9319667। इस पे कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं और रिडल भी बता सकते हैं, अपनी एडवाइस टिप्स। कल हमने आपको जो है कि ब्यूटी टिप्स भी दी थी, वो दोनों टिप्स यकीनन आपको याद हो गई हैं। बहुत सारी नींद करें, लेकिन नींद उतनी करें जितना जो है कि आपकी नीड है, अदरवाइज जो ज्यादा सोते हैं वो फिर अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाते।

जी तो रिडल के रिप्लाईज हमें आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं। प्रोग्राम के एंड में हम रिडल बताएंगे कि रिडल क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज है। अब हम बढ़ते हैं आगे एक खूबसूरत ट्रैक की तरफ। आप ट्रैक एंजॉय करें और सुनते रहें मिल्क राइस ब्यूटी शो विद आबिद चौहान।

जी दोस्तों अवा बुधी रहा मिल्क राइस ब्यूटी शो आऊँ आया आबिद चौहान मुझो अवा जो साथ हों अठे का नाए वगे ती ए इन प्रोग्राम में अस अवा के खूबसूरत ब्यूटी टिप्स पिण दींदा कलो का ब्यूटी टिप्स अस रिपीट क्यों था अस अवा के मशवरों से मुफ्त में मशवरों हाँ मुफ्त के मशवरे से आजमाए केर केर तो आजमायण शर्त हों वो गारंटीड मशवरो है अड़े तरीके से असं यो ही चूं पाँच प्रोडक्ट ला भी आजमायण शर्त है असंखे असि दलील जो दावा जो मौको दस दावा क्यों था असाजी प्रोडक्ट जबरदस्त है बेहतरीन है उनको असंखे तहां दलील देने जो मौको दी मौको यो है तो तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है इस्तेमाल करण का फीडबैक देो है पैजो।

जी दोस्तों, जिन दोस्तों हीर जो गाता है एफएम 94 मैरापुर ट्यून के वाहे उन दोस्तों के बुधाई दो हालात आज के प्रोग्राम जो जो अनुमान है टॉपिक है वो एक रिडल है पहली गुजरत है परोली है वो परोली है तो वो केडी शय है जेका अंधो बिद सी सके तो असा के रिप्लाई आंसर अच स्टार्ट थी वे असा कुछ मैसेज भी शामिल करदा से प्रोग्राम

जी दोस्तों, कॉलिंग ऐं टैक्स जो सिलसिलो हलंदो रहंदो। असां हिकिड़ो ट्रैक प्ले कंदासीं, ज़बरदस्त गॾिजी ट्रैक इंजॉय कंदासीं ऐं अव्हां तेसीं ताईं असांखे कॉल ऐं टैक्स वसीले ॿुधाईंदो त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका अंधो बि ॾिसी सघे थो। लेट्स एंजॉय द ट्रैक।

इन खां अलावा अवां असांजे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी पंहिंजे शहर में पंहिंजे तर में बि कराए सघो था। 0300-310-5109 ते कॉल करे मलिक ज़फर इक़बाल साहब ऐं एम सिद्दीक़ साहब सां राबितो करे अवां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराए सघो था।

मिलराइस जूं ख़ूबसूरत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आहिनि, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप, एक्नी क्रीम ऐं वाइटमिन सी। खूबसूरती जो नज़र आए भरोसा जो दिल जीत लाए, और हम दावा नहीं दलील देते हैं, तो हमें दलील का मौका देने के लिए आपको हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी होगी, उसके बाद आप हमें फीडबैक देंगे।

जी, तो आज के प्रोग्राम में बहुत ही एक दिलचस्प जो है कि सवाल जवाबात यानी कि रिडल का जो है कि सिलसिला जारी है। बहुत सारे जवाबात हमें मौसूल हो चुके हैं। राइट आंसर क्या है, हम जस्ट ओनली प्रोग्राम के एंड में राइट आंसर बताएंगे। जिन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने जो आंसर दिया, वो खुद आंसर सुन के वो नोट कर लेंगे कि किन्होंने सही रिप्लाई दिया और किन्होंने गलत रिप्लाई दिया।

जी तो रिडल के साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे, मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैरापुर में अवेलेबल है इन स्टोर्स पे, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर और कोरी जनरल स्टोर मैरापुर।

जी तो आज की हमारी रिडल है, पहली गुजारत फिरोली, ऐसी कौन सी चीज है जो अंधा भी दे सकता है, एडी केडी शे आहे जेका अंधो बिन सी सके तो।

जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो में, मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेरापुर।

जी, इसके साथ जो है कि बिल ग्राइस ब्यूटी शो का टाइम लगभग कंप्लीट होने वाला है। आप ट्रैक एंजॉय करते रहे और मुझे दें इजाजत और रिडल, इजाजत जाने से पहले रिडल, जी जी जी, पहली का अपडेट कर रहे थे, तो जिसने भी ये रिप्लाई दिया है वो सुन ले कि आज की इस पहली का आंसर है वो ऐसी कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकता है। तो आंसर है ख्वाब। ख्वाब हर कोई देख सकता है और देखने चाहिए, जितने बड़े ख्वाब देखेंगे उसकी उतनी जो है कि साभ्या के लिए हम जो है कि मेहनत करेंगे और ख्वाब देखना अच्छी बात है। एंजॉय द ट्रैक। आबिद चौहान को इजाजत दें, सिंध सलामत, साथ सलामत, अल्लाह ने के बांध।

0: Sindh is a historic, civilizational and constitutional entity as a distinct and undivided province. Sindh played a pioneering role in the creation of Pakistan, and the Sindh Legislative Assembly was the first provincial legislature of British India to adopt a resolution in support of the establishment of Pakistan 3rd March 1943. Now therefore, this House hereby, first, unequivocally rejects any proposal, plan and scheme or constitutional arrangements by whatever name or description which seeks to divide Sindh, alter its existing territorial limits, create any new province out of this territory. After me, ye kehna zaruri hai ki Sindh is one and shall remain one.
1: Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously.
2: सिंध काहे ऐं हमेशा हिकु रहंदी. सिंध असेंबली सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ ईंदड़ साज़िशनि ऐं धरती जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ हिकु भेरो ॿीहर यकराउ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो. सिंध असेंबली में नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स बाबति रिथ ते बहस मुकमल थियण बाद पीपल्स पार्टी MPA निसार खोड़ो सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पेश कयो, जेको ऐवान यकराए मंज़ूर करे वरितो. ठहराउ में चयो वियो आहे त मुल्क में नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि जे हवाले सां नई सिर बहस शुरू थी वियो आहे. अहिड़ियुनि तजवीज़नि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो. सिंध हिकु तारीख़ी, तहज़ीबी ऐं आइनी सुञाणप रखंदड़ ख़ितो आहे. सिंध जी सुञाणप ऐं इलाक़ाई तसलसुल सदियूं पुराणो आहे. सिंध अणटुट सूबे जी हैसियत सां पाकिस्तान में शमूलियत अख़्तियार कई हुई. ही ऐवान हिकु भेरो ॿीहर सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे सख़्तीअ सां रद्द करे थो. इसारो मत खोड़े पारां पेश कयल ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराउ मंज़ूर करे सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे चुकी आहे. आइन में वाज़े आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लाॻापियल असेंबली मां ठहराउ मंज़ूर थियण ज़रूरी आहे. सिंध मां कंहिं बि ज़िले, डिवीजन या इलाइक़े खे धार कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली जी इजाज़त नथी ॾिए. ऐवान वाज़े लफ़्ज़नि में ऐलान करे थो त सिंध हिकु आहे ऐं हमेशा हिकु ई रहंदी.
3: इधर आज अभी अनफॉर्चुनेटली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ के चले गए, जिसका मतलब कुछ नहीं था. एंड ऑफ द डे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे और कोई लफ्ज आता नहीं, उर्दू मेरी कमजोर है. इतना बड़ा दोगलापना मैंने नहीं देखा कभी. मुझे और लफ्ज नहीं आता. अगर कोई और लफ्ज हो शहीद या कोई और मुझे बता सके कि इसका दोगले का और क्या लफ्ज है कि एक तरफ कहते हैं कि हमें सिंध की डिवीजन मंजूर नहीं, और उसके बाद जो उन्होंने पढ़ी थी, मैंने तो इसलिए कि उन्होंने दिखाई थी, हमें एक मुहिम चली कि कराची को सिंध से अलग किया जाए, निसार खोड़ो इस बहस को सही जगह पे लेके आया जहां पे ये डिस्कस होनी है, और उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो कि ऐसी जगहों पर ये डिस्कशन करें जहां इनकी कोई जरूरत नहीं है. टेलीविजन शोज पे इसकी जरूरत नहीं. आप करें, फैसला इधर होना है, फैसला इधर हो चुका है. बेवकूफ बनाना ये इनका काम है. अच्छा, अब मसला ये है कि लोग इनसे बेवकूफ नहीं बन रहे, लोग इनको वोट नहीं दे रहे, तब किसी और को राजी करने के लिए सारा काम कर रहे हैं.
2: MQM वारा सिंध जो विरहाङो नथा चाहिनि, ऐवान मां भॼी छो विया? नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो TV प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे. ख़बर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरहाङे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो ॿिटो मयार आहे. TV विकणी बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे. सिंध जी वहदत ते ॿिटो मयार क़बूल नथो करे सघिजे. ख़बरदार करियूं था त क़ौमी असेंबली बि सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि नथी करे सघे. वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में ख़िताब. वॾे वज़ीर चयो त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो त बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं. छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? समुझ में न पियो अचे सिंध असेंबली में मौजूद मुबैना PTI वारा हिदायतूं कंहिं खां वठी रहिया आहिनि. पीटीआई वारा असाजे सामूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरागे जे खिलाफ आहिनि।
4: लीडरशिप की कही हुई बातें, लिखी हुई बातें, साइन की भी बात है, आप उनकी भी बात नहीं मानते हो। ये वाले मंदिर नहीं चलने वाले भाई जी, ये कैसे पुरानी हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कोई नई चीज लाओ, नई चीज बेचारे ला नहीं सकते। तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का नैरेटिव मैंने आपके सामने रख दिया है कि हम सूबे की तकसीम नहीं चाहते और एहतजाजन गवर्नेंस को लाती है, छुपाती है ताकि सिंध के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। हम ऐसी करारदाद को नहीं मानते और इसको अपोज कर
5: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तक

0: पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 शाम 5 ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न बधन मर्दन औरतन में वजन जो न बधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो। राबते लए 03016196851।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई लबन ते मुर्का विखरल दिल में आबे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ कराची में कश्मीर की झर का कानून जरदाई सुहणी सिंध वासन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल कर प्रोग्राम दिल जी गाल संगद आऊं आया आबिद चौहान अवां बुधी रहा हो GAFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम में शामिल कंदासीं खोड़ सारी शायरी अवां जो कानून खूबसूरत म्यूजिक

अवां सां गॾु साथ हूंदो हींअर खां राति 11 वॻे ताईं। लाइव कॉल कॉल वसीले अवां असां करे सघो था पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488। हा ईंदुसि प्यारा मां मोटी कुझु ॾींहं पहिरीं इंतज़ारु थ कर। हा ईंदुसि प्यारा मां मोटी कुझु ॾींहं पहिरीं इंतज़ारु थ कर। मां वेंदुसि तोखे साण वठी मुंहिंजे वाइदे ते एतबार थ कर।

तू बूट अखियूं महसूस कंदे मां साजन तुझे साम्हूं आ तू बूट अखियूं महसूस कंदे मां साजन तुझे साम्हूं आ तू खोल दरी पहजे दिल जी ऐं दिलबर जो दीदार त कर हा इंदुस प्यारा मां मोटी कुछ दिन परी इंतजार त कर।

जी दोस्तों, अमरदीवा एफएम 88 नेटवर्क आऊं यहां अब चौहान प्रोग्राम दिल जी गाल संगत सबनी दोस्तन के प्री प्यारन दिल रबा दिल पर दोस्तन के वेलकम भलीकार खुश आमदी असा एक खूबसूरत ट्रैक प्ले कंदा से और ट्रैक का तो असा लाइव कॉलिंग गुंडदा से असा जो लाइव कॉलिंग नंबर आ है 03 000 11 34 88

0: जी तो दोस्तों, प्रणाम दिलजीवाल भाई, रोमांटिक प्यारो गीत जलाल चांदियो जी आवाज
1: में। पीछे मस कर बाहर आयो से पढ़ तो ही बिस्मिल्लाह वाली ओ बखता पीछे मस महबूब।

चैठो मात्रा सदमा सही पढ़तो ही बिस्मिल्ला वाली ओ मुखदात चमस महबूब विधाक ते आयो चैठो मां एतरा सदमा सही तो महबूब जी धाक ते पतो या तुम वक्ता फकीर कुछ तर सदमा खा घड़े गलाए पे महबूब ने पे गलाए तुम्हारी महबूब के दिसी घड़े वाली पचर छड़ी फकीरानी महबूब सा पे गलाए छा पे चेस ओ केड़े गाले रुठे यार मैदा ओ गाले रुठे यार मेरा मैं कुरुसन दी गाल सुनाई वन दा गाल्या हिन सादे जमे तू अपनी गाल सुनाई वन्यो लोक देता ने सिर ते चायो से सादे सिर दा बार लहाई वन्यो गुलाम फरीदा ओ वसन खिड़ वे जा तू भला हिकड़ा भाकुर पाई दोस्तों आखरी चई ता गुलाम फरीदा असा निखड़ वे जा तू भला हिकड़ा भाकुर पाई वरी महबूबन जी मर्जी हुदिया महबूब उनके भाकुर न पियो पाए ऐ चुप कयो वरंदीप नठो जे हलो पियो वने आस पिसी अन्या पोया केड़ो डोरा पियो पियो दिस इन कलाम जे लाए फरमा शाह सैयद भूरल शाह जी ऐ राजा खान मंगणे जे जी ऐ भाऊ हसन अली खान जतोई जी ऐ रईस नबन खान लुंड जी केड़ो डोरा पियो पियो न पियो गला चेस पियो।

0: GA Sakhar FM 88.
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

हर तरफ सावक जा मंजर थो ॾिसां, हर तरफ सावक जा मंजर थो ॾिसां, पोइ बेवासू था चवन रंजूर हूं, नाहे परवा गढ़ू कंहिंखां दूर हूं। मक्तलनि जी सूंह ऐं क़ाइम फिकर, मक्तलनि जी सूंह ऐं क़ाइम फिकर, किथ असां सचल किथे मंसूर हूं, नाहे परवाह गढ़ूं कंहिंखां दूर हूं। सोच जो अंदाज़ आहे बावजू, सोच जो अंदाज़ आहे बावजू, पारसा कंहिं फिक्र जा मंशूर हूं, नाहे परवाह गढ़ूं कंहिंखां दूर।

जित अम्हा जी दिल अम्हा खां थी परे, जित अम्हा जी दिल अम्हा खां थी परे, समझ जो बेजोर उत मजबूर हूं, नाहे परवा गद हूं कैखां दूर हूं, इश्क में पुरवाश हूं भरपूर हूं।

प्रोग्राम दिल जी गाल सा गरा हूं है अब चौहान आए अब बुदी रहा हूं एफएम 90 नेटवर्क प्रोग्राम दिल जी गाल सा गरा हूं है अब चौहान अब बुदी रहा हूं एफएम 88 नेटवर्क

असो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। ही गजल हो प्यारे माहिर सिराज अली जो इन गुड असा हाँ कॉलिंग अटेंड कंदासे असा गुड कॉलर मौजूद है।